इश्क़ मिनु मिनु हाबी खुशी की जिल जिल बीबी बिन धुन हलवा रिम जिन जिन जिन जिन ना पसी की हलवा जी बूम्बा।